0: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বৈষ্ণৱী। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सीईटीए आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता डीसीसी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन सीईटीए और डीसीसी का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथेसिय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारे पानी के रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल

0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
2: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नयनी पांडे।
0: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे।

0: इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीब

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स की 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতেই ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
1: আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে ফৰহত নাজ। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरूआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी

निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी

है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा

कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हमारा आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर होगा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत और 12:38 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी नगमे।

एक बजकर पांच मिनट पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और समाचार के बाद हम फिर से लौट आएंगे और आपको सुनाएंगे कार्यक्रम तरंग एक बजकर दस मिनट से प्रादेशिक संगीत। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे एक बजकर चालीस मिनट से।

दो बजे आपको एक बार फिर से जुड़ाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हमारा आज का अंतिम कार्यक्रम है प्रेत लड़ी, जो आप सुनेंगे दिन के 2:30 बजे। और फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम के साथ ही हमारा आज का सैनिक भाइयों का कार्यक्रम समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी अग्रिम जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

फौजी भाइयों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये पहला गीत रंगीला फिल्म से, आवाज थे आशा भोसले की। अब सुनिए रब ने बना दे जोरी, इस फिल्म से गीत सुखविंदर सिंह की।

फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनाने के लिए लाए हैं जोड़ी नंबर 1 एसएफएम से गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है सुधाकर शर्मा ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। तो आइए सुनते हैं जोड़ी नंबर 1 फिल्म से ये गीत।

फौजी भाइयों, आज का गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जोड़ी नंबर वन फिल्म से ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। और इस गीत के साथ ही हमारा आज का दैनिक कार्यक्रम आज का गीत यहीं पर समाप्त होता है।

अभी कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी नगमे। और इस कार्यक्रम को सुनने से पहले आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल गुरुवार है, रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण भी प्रारंभ होगा दिन के 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे

1:05 पर आपको सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार और समाचार के बाद हम फिर से लौट आएंगे और आपको सुनाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम स्वच्छाया 1:10 से। प्रादेशिक संगीत ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:40 से।

दो बजे आपको एक बार फिर से सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। हमारा कल का अंतिम कार्यक्रम है गीत रंगीले, जो आप सुनेंगे दिन के 2:30। तो फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम के साथ ही हमारा कल का कार्यक्रम समापन होगा दिन के 3:00। और ये थी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

फिल्मी नगमा कार्यक्रम का यह था पहला नगमा जिसे अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। फिल्म का नाम था साथ साथ। अब सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है गजल।

फौजी भाइयों, आप एक कार्यक्रम अभी सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिष पर से। मीडियम में 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अभी हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी नगमे।

फौजी भाइयों, अभी आप ये गीत सुन रहे थे सलमा आघा की आवाज में निकाह फिल्म से। अब सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है शालीमार।

फौजी भाई, उस समय के अभाव के कारण ये गीत हम आपको नहीं सुना पाए पूरी तरह से, जिसके लिए हमें दुख है। और इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्मी नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम आप अब से 1:40 तक आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे 529.1 मीटर पर। अभी आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम तरंग, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनाते हैं बॉलीवुड के किसी भी एक अभिनेता अभिनेत्री द्वारा अभिनीत गीतों को। और आज हम आपको सुनाने के लिए लाए हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर द्वारा अभिनीत कुछ गीतों को। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

फौजी भाइयों, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बारे में। करिश्मा कपूर हिंदी फिल्म की मशहूर अभिनेत्री है और 90 के दशक में वो टॉप हीरोइन थी और इनका जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने बॉलीवुड के कई प्रसिद्ध और पुरस्कार जीतने वाली फिल्मों में अभिनय की। अब सुनिए ये गीत।

करिश्मा कपूर ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1992 में आई फिल्म प्रेम कैदी से की। फौजी भाई बता दें कि करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे सुपर खूबसूरत अदाकारों में से एक अभिनेत्री है और उनके लाजवाब अभिनय और बेहतरीन नृत्य उनकी कुछ खासियतें हैं और अपनी फिल्मी कैरियर के दौरान उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम किया। अब सुनिए उनके द्वारा अभिनीत ये गीत।

फौजी भाइयों, आप ये अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से मीडियम 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रिक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से 529.1 मीटर पर। फौजी भाइयों, अभी हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम तरंग और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर द्वारा अभिनीत कुछ गीतों को।

करिश्मा कपूर ने कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय की, जिनमें प्रेम कैदी, अनाड़ी, राजा बाबू, अंदाज अपना अपना, कूली नंबर वन, साजन सलेज सचुराल, राजा हिंदुस्तानी जैसे बहुत सारे फिल्मों ने उन्होंने अभिनय किया और कई सारे पुरस्कार भी जीती। वहीं उन्होंने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी उन्हें मिला है। राजा हिंदुस्तानी 1996 की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म के म्यूजिक भी सुपरहिट थे। इस फिल्म में करिश्मा कपूर के साथ आमिर खान ने अभिनय किया और आज भी ये दोनों की जोड़ी फेवरेट है और इस फिल्म के अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

और फौजी भाई, उस गीत के साथ ही हमारा आज का साप्ताहिक कार्यक्रम तरंग यहीं पर समाप्त होता है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर द्वारा अभिनीत कुछ गीतों को। और ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से। अब से ये कार्यक्रम सुनेंगे केवल आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम एम 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनाएंगे चंद तमिल गीते। तो आइए सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम के और चित्रा की आवाजों में कार्यक्रम का ये पहला गीत।

फौजी भाइयों, आप ये अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से। मीडियम एफ 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। अभी हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं चंद तमिल गीते। तो आइए कार्यक्रम का जारी रखते हुए सुनते हैं SB बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में ये गीत।

और फौजी भाइयों उत्साह उठक के गाए इस गीत के साथ ही हमारा आज का प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चंद तमिल गीतें।

0: गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों

0: तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
0: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आग्रह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
2: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है, लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि

0: वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग ज्योतिष पर है। मीडियम में 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। समाचार के बाद अब सभी सैनिक भाइयों को हमारे कार्यक्रम में मैं अर्चना एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं।

प्रीतलड़ी कार्यक्रम का यह था पहला गीत, जिसे अभी आप सुन रहे थे मंजिल मंजिल फिल्म से। आवाजें थी आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की। अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

फौजी भाइयों, आप ये कार्यक्रम अभी सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्रागज्योतिषपुर से। मीडियम में 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर अभी हम आपको सुना रहे हैं हमारा आज का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी।

तो फौजी भाइयों कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत टांगे वाला फिल्म से आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

0: पायत जो हुलिया कर दे सायत हर सीन हजारों इसमें मारा मारी के भरपूर संकट करके थोड़ा भर के छाती झर के देखो मेरे यार जवानी खेल अजब सिखलाए
1: दो दीवाने
0: आए
1: अरे एक तमाचा
0: लाए
1: देखो तो की सदी फिल्म ये बोले नाचे गाए कहो क्या झूठ बात रे
0: नहीं
1: तो बस फिर देखो।

0: राशन राशन के ऊपर भाषण भाषण जिसको होती है नेता की जय जयकार। पैर को लंदन
1: कहाँ जाने में,
0: तुर्की जर्मन
1: कहाँ जाने में,
0: चल वाशिंगटन
1: कहाँ जाने में,
0: देख ले अपनी आँख से कोई चांद कैसे जाए।

प्रीतलड़ी कार्यक्रम में अब सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत धर्मात्मा फम से, आवाजें हैं मुकेश और कंचन की।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश और कंचन की आवाजों में धर्मात्मा फिल्म से ये युगल गीत, और इस गीत के साथ ही हमारा आज का युगल गीतों का कार्यक्रम प्रीत लड़ी यहीं पर समाप्त होता है। अभी दिन के 3 बजने वाले हैं, साथ ही साथ समाप्त होता है हमारा आज का सैनिक भाइयों का कार्यक्रम। कल 12:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी।

तक के लिए मुझे अर्चना को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अभी आप सुनेंगे FM रेनबो के कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ मैं अनुराधा, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, जोड़ों का दर्द केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी व्यक्ति को थका देता है, तो कैसे इस दिक्कत से आपको निजात मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज जो विषय हम चुनकर लाए हैं वो है रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट यानी रोबोटिक जोड़ प्रत्यारोपण। इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो हमें तुरंत कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107। तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और कॉल करें। आपके सवालों का समाधान करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, फॉर्मर चीफ जेपीएन एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एंड प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर साहब का स्वागत करें, उससे पहले ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ श्रोताओं, आज रेडियो डॉक्टर में हमारा जो आज का विषय है वो है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, और इस विषय पर हम बहुत बेहतर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस समय जो मौसम है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये समस्याएं जो हैं इस मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं, ये सब चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन एक गीत और सुन लें फिर।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: जी हाँ, साथ साथ चलते हुए हम वहाँ पर आ गए हैं जहाँ हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और पूरी तरह से अपना जीवन जो आप है वो सुचारू रूप से चला सकें। और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं आज रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट पर। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट क्या है और इसकी जरूरत कब और किस स्थिति में पड़ती है?
1: मेरे श्रोताओं को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार
0: जी।
1: बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आजकल बहुत जिज्ञासा श्रोताओं के मन में होती है कि आखिर ये रोबोटिक सर्जरी क्या है। ऐसा है कि सर्जन बाहर बैठा रहता है और रोबोट अंदर जाके ऑपरेशन कर देता है, तो रोबोटिक सर्जरी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आपकी बिल्कुल नई जो लेटेस्ट गाड़ियां हैं उनमें GPS लगा है या लेन मैनेजमेंट लगा है या लेन पार्किंग लगा है, ऑटोमेटिक पार्किंग लगा है। ये टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी जो है किसी भी सर्जरी में यूज की जा सकती है, लेकिन इसको हम आजकल सारी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में प्रैक्टिकली यूज करने की संभावनाएं बन रही हैं, पर अभी जो प्रैक्टिकली है जो

0: नी रिप्लेसमेंट है जिसमें पार्शल और टोटल नी दोनों इंक्लूडेड है, और हिप रिप्लेसमेंट खास करके हिप रिप्लेसमेंट और पार्शल नी रिप्लेसमेंट में इसका बड़ा अच्छा योगदान है क्योंकि इन दोनों में कॉम्प्लिकेशन रेट काफी और फेलियर रेट काफी कम किया जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति जिसको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत है उसकी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आज की तारीख में रोबोट से भी की जा सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, पारंपरिक जो सर्जरी है उससे ये किस तरह से अलग मानी जा सकती है?
0: वो कई तरह से अलग है, जैसे कि आप अब जैसे जीपीएस यूज करते हैं तो आपको चाहे रास्ता आता है लेकिन आपको गूगल बता देता है कि यहाँ पे ट्रैफिक है या यहाँ पे कोई कॉशन है, यहाँ पे कोई वार्निंग है। तो जो पहली बात तो ये है कि एक हमारा मानना है आजकल कि हर व्यक्ति अलग होता है, तो किसी का घुटना बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी पे कोई एंगल है, किसी पे कोई एंगल है। तो जो एक पर्सनलाइज्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसको कहे, जो व्यक्ति विशेष के लिए ही टेलर्ड हो, ऐसी सर्जरी सिर्फ रोबोट से संभव है। जबकि आपकी टांग में जो नेचुरल कर्व है वो हर व्यक्ति में अलग होता है, तो उस कि जो है एनाटॉमी जो हम कंप्यूटर से देख के या रजिस्ट्रेशन करके उसको प्रिसाइजली उनकी जैसी घुटने की बनावट है उस तरह का विशेष तरीके से ज्वाइंट रिप्लेसमेंट उस अलाइनमेंट में उनका किया जा सकता है। दूसरी बात है प्रिसीशन है, तो एक रोबोट जो है वो इतना प्रिसाइज है कि 0.1 मिलीमीटर तक की डेविएशन नहीं देना चाहता। मैं आपको देता जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे कोई एक कंपोनेंट 2 डिग्री में डालना है तो वो पारंपरिक तरीके से संभव नहीं है, लेकिन रोबोट वो कर सकता है। तीसरे जो टिश्यू है उनकी प्रोटेक्शन होती है, अगर रोबोट ने एक लाइन लगा दी तो उसके बाद अगर मैं हाथ में रोबोट को लेके पुश भी करूँ तो उस बाउंड्री के बाहर नहीं काटेगा, तो टिश्यूज की सुरक्षा इससे सुनिश्चित होती है। और ये भी होता है कि क्योंकि इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कम होती है, रिलीफ कम होते हैं, तो इसमें दर्द कम होता है और रिकवरी भी फास्ट होती है।
1: जी बहुत सारे फायदे हैं डॉक्टर साहब, आपसे आगे भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक गीत यहाँ सुन लेते हैं आगे के सवाल इसके बाद।

0: जी हाँ, काली घटाओं की बात तो सुनिए, लेकिन हमारी बात भी ज़रूर सुनिए और गौर भी कीजिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट पर, जो एक आम समस्या है। हमें ये पता है कि जो जोड़ों के दर्द होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं। सागर साहब का ये मैसेज है विजयपुरा कर्नाटका से, ये जानना चाहते हैं कि जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं बाद में क्या उनको जोड़ों की समस्या हो सकती है, या अर्थराइटिस की जिनको समस्या है, क्या रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट उनके लिए काम करता है?
1: जी तो सागर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो लोग बहुत ज्यादा जिम करते हैं या मैराथन करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, जिसमें कंटैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें घुटने में इंजरी होने की संभावना होती है, तो ये ध्यान रहे कि जब चोट लगती है जिस घुटने में, उस घुटने में जो डिजेनरेशन की प्रक्रिया है, जो उसके खराब होने की प्रक्रिया है, उसकी दर थोड़ी तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स में ज्वाइंट जल्दी खराब होते हैं। और बिल्कुल अगर किसी को आर्थराइटिस है तो रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है, और बल्कि बहुत तरीके से कन्वेंशनल से बेटर है। जैसे कि अगर किसी के हिप ज्वाइंट बहुत ज्यादा खराब है, टांग छोटी लंबी है, तो उसमें जितना प्रिसीजन से रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट से सर्जरी की जा सकती है वो मुश्किल है पारंपरिक तरीके से, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो जी, हर तरह की, जैसे मैंने पहले कहा, सर्जरी को रोबोटिक से किया जा सकता है। कोई भी ऐसी सर्जरी नहीं है जो पारंपरिक रूप से की जा सकती है, लेकिन रोबोट से नहीं।

0: की जा सकती है, लेकिन उसकी एक एक्सपेंस है, उसका एक खर्चा है, और उससे जो उसका एक ड्रॉबैक है वो यही है कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और लोगों के मन में होता है कि ये सर्जरी कितनी टिकाऊ होगी, क्योंकि लोगों को आमतौर पर आदत हो जाती है पारंपरिक जो चीजें हैं उनको अपनाने की, तो ये जानना चाहूंगी मैं आपसे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल हर किसी के जहन में आता है कि अगर हम आज ऑपरेशन करा रहे हैं तो वो कितनी देर चलेगा। तो मैं आपको इसके दो भाग में इसका उत्तर दूंगा। पहला भाग तो ये है कि जैसे घुटना है उसको हम औसतन कहते हैं कि 20 साल चलता है, तो 20 का मतलब कुछ में 18 कुछ में 22, ये इस तरह से एवरेज या औसत हम कह सकते हैं कि घुटने की है। लेकिन जहां तक कूल्हे का सवाल है, जो कि ज्यादातर और युवाओं में बदला जाता है, कब एज में बदला जाता है, क्योंकि उसकी बीमारियां या तो युवावस्था में होती हैं या बिल्कुल बुढ़ापे में जाके होती हैं जब आपका कूल्हा टूट जाता है। तो आज की डेट में 25 से 30 साल जो है वो कूल्हा आराम से आपको सर्विस देता है, और जो नए वाले डिजाइन है वो बहुत अच्छे हैं, और उनमें आज की डेट में जैसे हम लोग एक सोसाइटी के मेंबर हैं, मैं इंटरनेशनल हिप सोसाइटी का मेंबर हूं, तो उसमें पिछले साल जब हम लोग ग्रीस में मिले तो हमने डिसाइड किया कि एक 50 साल के व्यक्ति को ये कहा जा सकता है कि आज अगर आप कूल्हा चेंज करवा रहे हो तो वो आपको सारी जिंदगी चलेगा।
1: जी।
0: तो ये एज पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी पे, यूज पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ एवरेज जो हम कह सकते हैं, जो मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आपको इतना दिन चलेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज आया हुआ है अनमोल गुप्ता जी का, सरिता विहार दिल्ली से। ये लिख रहे हैं कि मैं 45 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, एक्सरसाइज करते हैं ये साइकिल चलाकर, तो ये जो एक्सरसाइज है इनके लिए लाभदायक है क्या, या किसी के लिए भी लाभदायक हो सकती है? जी
0: जी जी, साइकिल का ये रहता है कि जो एक्सरसाइज वाली साइकिल है जिसको हम अगर जीरो रेजिस्टेंस पे या फ्री करके चलाएं और सीट को जितना ऊंचा कर सकते हैं उतना करके चलाएं और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह से उसका मूवमेंट करें, तो जैसे 15 मिनट फॉरवर्ड तो 5 मिनट बैकवर्ड, तो उससे इनकी काफी लाभ होता है। जो दूसरी आउटडोर वाली साइकिल है उसमें क्योंकि हम पुश करते हैं तो अगर आपको घुटनों की तकलीफ है तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है।
1: जी, तो थोड़ी सावधानियां जरूर बरतनी है जो कि डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास है सरोज मल्होत्रा जी का, साकेत मेरठ से। ये लिख रही हैं कि डॉक्टर साहब, रिप्लेसमेंट ना हो इसके बचने के लिए कोई उपाय बताएं। दूसरा सवाल इनका ये है कि इनकी सिस्टर को रिप्लेसमेंट बता दिया गया है तो उनको डर लगता है, थोड़ा सा ये जानना चाहती है विस्तार से कि कोई समस्या ना हो अगर वो रिप्लेसमेंट कराती है तो क्या क्या सावधानियां जरूरी हैं।
0: तो पहली बात तो ये है कि अगर आप घुटनों के रिप्लेसमेंट से बचना चाहते तो सबसे पहले अपना वजन नियंत्रण में रखें। सबसे बड़ा कारण जो घुटने घिसने का है वो वजन है, और आज की डेट में हमारे पास 35-40 साल के लोग आते हैं जिनके घुटने पूरी तरह से घिस चुके हैं क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है इस तरह की एक्टिविटीज करना जिनसे घुटना डैमेज होता है। अब फ्लैट कल्चर हो गया है, लिफ्ट नहीं है, तो लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो याद रखें कि सीढ़ी चढ़ते हुए अपने वजन का 10 गुना वजन आपके घुटनों पे पड़ता है। इसी तरह जमीन पे बैठना, आलती पालती मारना, इंडियन टॉयलेट यूज करना, बहुत ज्यादा 15 मंजिल से ज्यादा रोज सीढ़ी चढ़ना या 10 किलोमीटर से ज्यादा रोज चलना, कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपका वजन ज्यादा है, वीएटीएस ज्यादा है, इंजरी है। कुछ लोगों को, लेडीज को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको थायराइड है तो उसका नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपकी मदर को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको घुटने घिसने का अंदेशा ज्यादा है। तो इन सब को अपना लाइफस्टाइल आप चेंज करके, अपना वजन कम करके, अपनी मांसपेशियों को स्वस्थ रख के, उनकी लगातार व्यायाम करके, उनको स्ट्रांग करके रखें और घुटना डैमेज करने वाली एक्टिविटीज को कम रखें तो आप उस घुटने को चला सकती हैं। जहां तक आपकी सिस्टर का सवाल है, देखिए हम घुटना बदलने के लिए तब बोलते हैं जब आपका दर्द इतना ज्यादा है कि आपको लगातार दर्द की दवाई खाने की जरूरत पड़ रही है, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप ज्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई है, जीवन की गुणवत्ता पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो गई है कि आप मंदिर जाना चाहें, शादी में जाना चाहें या घूमने जाना चाहें तो नहीं जा सकते, तो ऐसे में उस घुटने से बाकी जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल है। अगर डॉक्टर ने उनको सर्जरी बताया है तो जाहिर है कि उनके घुटने पूरी तरह घिस चुके होंगे, तो अगर वो उसको जबरदस्ती उसके साथ खींचेंगी तो कई बार वो और भी कॉम्प्लिकेशंस को लीड करता है। तो

0: अगर आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए, और अगर आपको कुछ संशय है तो आप एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। कोई भी, मैं भी माइंड नहीं करता कि अगर मेरा पेशेंट मेरी दी हुई एडवाइस को किसी और से पूछना चाहता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपका ये हक है कि आपको कोई एडवाइस दी जा रही है, अगर आप उसको दूसरे से चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है तो उसको बहुत ज्यादा तक आप टाल नहीं पाते हैं। अक्सर लोग उसको पोस्टपोन कर पाते हैं, अवॉइड नहीं कर पाते हैं
1: जी। और डॉक्टर साहब, सुनने में ये भी आता है कि अगर ज्यादा डिले किया जाए तो उम्र बढ़ने के साथ और भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जहां सर्जरी कराना भी मुश्किल होता है। जी
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा अक्सर हमारे पास होता है कि लोग इतना डिले कर देते हैं कि कुछ हार्ट की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि हम ही लोग कहते हैं कि अब आपके लिए सेफ है, नहीं आप मत कराइए। दूसरे हम पेशेंट से एक ही बात पूछते हैं, आप क्या इस घुटने के साथ सारा जीवन निकाल लोगे? लेकिन याद रहे, ये वायरल बुखार नहीं है जो अपने आप ठीक हो जाएगा, ये समय के साथ बढ़ेगा। आप चलना बंद कर दोगे तो ये बैठे बैठे भी दर्द करेगा, अगर आप दर्द की दवा खाओगे तो आपकी किडनी डैमेज होगी, और आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करके, चलना फिरना बंद करके, पेन किलर खा के अगर आप अपने जीवन को बिताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को छोटा ही कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब, जैसा कि इन्होंने लिखा कि इनको डर लग रहा है तो लेकिन ये समस्या ना हो, पहले कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और इंश्योर किया जाता है मरीज को जिससे वो दिक्कत में ना आए, तो टेस्ट कौन कौन से पहले होते हैं?
0: जी पहली बात तो यह, अगर मरीज मुझे आके बोलते हैं कि डर लग रहा है तो मैं उनसे कहता हूँ कि लगता है आपकी तकलीफ जो है वो आपके डर से कम है। जिस दिन आपकी तकलीफ आपके डर से ज्यादा हो जाएगी तो आप खुद मान जाएंगे ऑपरेशन के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर ऑपरेशन सेफ नहीं है तो आपके डॉक्टर ही नहीं करेंगे, ये एक टीम का काम होता है, उसके अंदर एनेस्थेटिस्ट होता है, उसके अंदर फिजिशियन होता है, उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपकी शुगर बहुत साल से बहुत खराब है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, तो एक टीम होती है जो पहले ये निर्धारित करती है कि आप ऑपरेशन के लिए फिट हैं कि नहीं, और दूसरी बात इस समय फिट है कि नहीं। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है, शुगर कंट्रोल नहीं है तो हम कहते हैं जाइए पहले शुगर कंट्रोल करके आइए, आपका HbA1c जो है वो 7.2 कई जगह 7.5 बट हम 7.2 कहते हैं, इससे कम होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, आपका थायराइड कंट्रोल होना चाहिए, ये कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं है। देखिए ये नियम तो सेम है, चाहे आप रोबोटिक कराएं, कंप्यूटर से कराएं या पारंपरिक तरीके से कराएं, लेकिन ये एक इलेक्टिव ऑपरेशन है जिसको प्लानिंग के साथ किया जाता है, इसलिए हम कोई भी एडिशनल रिस्क नहीं लेते हैं और मरीज को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही अपने सारे विशेषज्ञों से ये निर्धारित कराते हैं कि कब उपयुक्त समय रहेगा जब आपकी फिटनेस मैक्सिमम होगी और आपको कोई भी रिस्क होने की संभावना मिनिमम रहेगी।
1: जी डॉक्टर साहब, एक ये भी बात होती है कि हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि दिक्कत हो सकती है, हमें उससे पहले फायदे जानने की जरूरत होती है, जैसा कि कहा जाता है कि इस ऑपरेशन में ब्लड लॉस कम होता है, क्या ये सच्चाई है?
0: जी कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर से करते हैं या रोबोट से करते हैं तो उस समय पे हम लोग कुछ स्टेप होते हैं, जैसे पारंपरिक में हम लोग फीमर की कैनाल खोलते हैं और उसमें जिग डालते हैं, तो ब्लड लॉस इसमें कम होता है। ब्लड लॉस इसलिए भी कम होता है कि सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कम करने पड़ते हैं, तो जी बिल्कुल सही है, ब्लड लॉस कम होता है, दर्द कम होता है और अर्ली रिकवरी फास्ट होती है, जबकि कुछ लिटरेचर ये कहता है कि 6 महीने के बाद उसमें कोई अंतर नहीं होता दोनों कैटेगरीज में, लेकिन अर्ली रिकवरी में डेफिनेटली फास्ट होने का एविडेंस है, पेन कम होने का एविडेंस है, ब्लड लॉस कम होने का एविडेंस है।
1: जी और डॉक्टर साहब, समय कितना लगता है सर्जरी पूरी होने में और कितने समय तक हॉस्पिटल में रखा जाता है मरीज को?
0: तो आपका पहला सवाल तो ऐसे है कि जैसे आपने पूछा कि आकाशवाणी भवन से कनॉट प्लेस जाने में कितना समय लगता है, कि आपकी कौन सी गाड़ी है, कैसा ड्राइवर है, कितना ट्रैफिक है बाहर, लेकिन औसतन ये सर्जरी 30 से 35 मिनट में खत्म हो जाती है और हॉस्पिटलाइजेशन टिपिकली 5 दिन का होता है, 1 दिन पहले एडमिट किया जाता है, उस सेपरेट टेस्ट किए जाते हैं, फिटनेस देखी जाती है, अगले दिन ऑपरेशन किया जाता है। अधिकतर हम लोग ऑपरेशन वाले दिन ही पेशेंट को बेड से निकाल के खड़ा करते हैं, चेयर में बिठाते हैं और चलाते हैं, और 24 घंटे बाद उनको सीढ़ियां चढ़वाया जाता है, वॉशरूम भेजा जाता है, और 10 से 14 दिन तक वो वॉकर यूज कर सकते हैं और 10 से 14 दिन तक स्टिक। हालांकि कुछ हमारे मोटिवेटेड और युवा जिनको कहें जो सिर्फ 60-65 साल के ही हैं, वो लोग पहले हफ्ते में ही स्टिक के बिना भी चलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, रिकवरी एक बहुत ही इंडिविजुअलाइज चीज है, हर एक व्यक्ति का अपना

0: डॉक्टर साहब, और क्या क्या एहतियात हैं जो गलत फहमी में लोग करते हैं? एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन उससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं, अगर कोई समस्या है तो क्या कहना चाहेंगे?
1: तो एक तो स्क्वाटिंग जो है, स्क्वाट्स, जिम वाले स्क्वाट्स बहुत कराते हैं। दूसरे बहुत लोग मैंने देखा कि काफी एज तक, खास करके जो ज्यादा एज वाले जिनको बचपन से ही इंडियन टॉयलेट या भारतीय शैली के शौच को इस्तेमाल, शौचालय को इस्तेमाल करने की आदत है, वो एक चीज है जो घुटनों के लिए अच्छी नहीं है। अब हमारे यहाँ सब पूजा पाठ जमीन पे बैठ के किया जाता है, आलती पालती मार के किया जाता है, आप जरूर करें, लेकिन अगर आपको घुटनों की तकलीफ शुरू हो गई है तो जमीन पे बैठना और आलती पालती मारना पूर्णतया बंद करने की कोशिश करें, क्योंकि उनसे भी नुकसान होता है। इसी तरह से जो अब सीढ़ियां जहां जरूरी है वहां चढ़े। देखिए, तीन चीजें हैं जिनसे घुटने में नुकसान नहीं होता है। एक होता है सैर करना, वॉकिंग। कई बार हम देखते हैं कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने बोल दिया आप चले ना 15 दिन, तो ऐसा कोई इलाज मुझे मालूम नहीं अपने पूरे करियर में जो ऑर्थोपेडिक्स में जितने पेशेंट को चलने से मना किया जाए। तो पहले तो वो गलत है अगर आपको ये बोला जाए कि आप चलिए मत। दूसरा, तैरना, जो लोग स्विमिंग जानते हैं, तैरना जानते हैं, तैराकी जानते हैं, उनके लिए इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन जिन लोग, जो लोग तैरना नहीं जानते हैं लेकिन उनको पूल की सुविधा है, उनके स्विमिंग पूल उनकी कॉलोनी में या उनकी सोसाइटी में है, तो शैलो एंड पे कमर तक पानी में चलना उनके लिए, घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। और तीसरा, जैसे अभी कुछ देर पहले बात हुई कि अगर एक्सरसाइज वाली साइकिल को जीरो रेजिस्टेंस पे फ्री करके चलाया जाए, जो 15 मिनट सामने की तरफ और 5 मिनट पीछे की तरफ, तो वो भी घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये चीजों का ध्यान रखें। चलने से, भगवान ने हमें दो टांगे दी चलने के लिए, चलने से कभी भी घुटनों में डैमेज नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको घुटनों की तकलीफ बड़ी हो तो आपको चलने में दर्द हो, तो थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन ये कभी ना सोचे कि चलने से मेरे घुटने डैमेज हो जाएंगे।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण आपसे जानकारी मिल रही है डॉक्टर साहब। यहाँ पर अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद करेंगे आगे की बातें।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट पर और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी। और आपके जो भी सवाल हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए स्टूडियो के नंबर हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और लगातार आप कर भी रहे हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070।
2: अनुराधा जी, मैं कुछ कहूँ?
1: जरूर सर।
2: तो जैसे आपने पिछला गाना बहुत खूबसूरत गीत चलाया, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, अगर जीवन में कुछ वजह है, जीने की वजह है, तो सबसे पहले अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ रखे
1: जी।
2: तो वो आपके और आपकी वजह दोनों के काम आएगी
1: जी। बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कही है श्रोताओं, और इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जीवन तभी खूबसूरत होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। और लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप स्वस्थ रहें, और उसके लिए लगातार डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार
3: जी, उत्तराखंड से बोल रहे हैं
1: जी। बताएं सर, क्या सवाल है आपका?
3: एक मैडम ऐसा है कि डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: एक कमर में अक्सर दर्द रहता है बहुत, मतलब वेस्ट वेस्ट मतलब कमर में ना
2: जी,
3: वेस्ट बोलते हैं सर ना
2: जी,
3: तो कमर में अक्सर दर्द रहता है। जैसे कभी मैं पैदल चलता हूँ तो जब मैं घर आता हूँ तो ज्यादा दर्द होने लगता है, तो ये जो है आगे जाके कुछ और परेशान करेगा सर, मैं यही पूछना चाहता हूँ।
2: देखिए ऐसा है कि कोई भी कमर का दर्द, आपको ये मैं बता दूं कि कमर का दर्द दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है, पहली है जुकाम। तो हर जीवित व्यक्ति जीवन में कम से कम एक बार कमर दर्द को जरूर झेलता है। तो कमर दर्द कई तरह के होते हैं, कुछ खतरनाक नहीं होते हैं, कुछ खतरनाक भी होते हैं। तो हम लोगों के पास कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनसे हम ये पहचानते हैं, लेकिन ज़्यादातर कमर दर्द जो होते हैं वो खतरनाक नहीं होते। आपने कुछ भारी वजन उठा लिया या आप ज़्यादा देर कोई कार ड्राइव कर लिया, जैसे मैंने घुटनों के लिए कहा, अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसका असर भी आपकी कमर पर होता है। और एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें कि आपका बैलेंस डाइट है, वजन ठीक है, आप व्यायाम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो उसमें आपकी कमर भी स्वस्थ रहती है। लेकिन कोई भी दर्द कमर का अगर आपको 5 से 7 दिन से ज्यादा चलता है, सुबह उठ के उसमें आपको कमर में अकड़न लगती है, आपका दर्द टांग में जाता है, आपको कोई पैर में कमजोरी लगती है, कुछ झंझनाहट लगती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि वो आपका पूर्ण रूप से निरीक्षण करके आपको ठीक से एडवाइस कर सके
1: जी।
3: ठीक है सर,
1: तो यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान हो गया है। डॉक्टर साहब, हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं और लोगों को मार्गदर्शन आप दे रहे हैं, क्या कोई एक ऐसा मौसम भी होता है जिसमें रिप्लेसमेंट आराम से करवाया जा सकता है, या किसी मौसम में भी, क्योंकि आजकल बरसात का सीजन है, लोग थोड़ा सा घबराते हैं?
2: बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैं इसका जवाब हमेशा, ऐसे सवाल हम रोज सुनते हैं, तो मैं ये कहता हूँ जिस व्यक्ति को डर लगता है और जो कराना नहीं चाहता है, वो गर्मियों में पसीना आता है उसको, सर्दी में उसको ठंड लगती है, बरसात में उसको लगता है कि

0: भाव खराब हो जाएगा, उस हिसाब से पूरे साल में उनको कोई अच्छा समय नहीं मिलेगा। हमारे अस्पताल पूरा साल भरे रहते हैं और पूरे साल ऑपरेशन होते हैं, तो मौसम का इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, जोड़ों का दर्द जैसे है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, अचानक बरसात होती है या ठंड पड़ती है, तो जोड़ों का दर्द जरूर मौसम से प्रभावित होता है और वो दर्द उन दिनों में बढ़ जाते हैं। लेकिन आपके प्रश्न का छोटा उत्तर है कि जी नहीं, ऐसा कोई मौसम नहीं है जो इसके लिए बहुत अच्छा है या इसके लिए बहुत खराब है।
1: जी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और डॉक्टर साहब बराबर आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी समस्या है तो आप पूरा समाधान ले सकते हैं डॉक्टरी सलाह से। डॉक्टर साहब, हमारे पास कृष्णा जी का रायपुर से मैसेज आया हुआ है, लिख रही हैं, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार भेजा है इन्होंने, मुझे भी भेजा है। जी, ये लिख रही हैं कि मेरी जिज्ञासा है कि 45+ मेरी बहन के दाहिने एल्बो में एक्सीडेंट के बाद स्टील प्लेट लगा है, क्या उसे लाइफ टाइम रखते हैं तो कुछ हानि तो नहीं होगी? इनका दूसरा सवाल है कि मेरे स्टील के नकली दांत लगे हैं, उसे लेकर भ्रम में लोग डालकर कहते हैं कि ऐसे में ईएमआर या कोई जांच है जिसे नहीं करवाना चाहिए, करंट से जान चली जाती है, क्या ऐसा होता है? थोड़ा मार्गदर्शन।
0: पहला तो ये बता दूं कि एमआरआई में करंट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसमें जो अगर कई धातु की चीजें होती है जिनसे एमआरआई इसका कंपैटिबल नहीं होती है। तो दांत के बारे में तो आप अपने डॉक्टर से पूछें, क्योंकि जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन आज की डेट में चोट लगने पे जितनी भी प्लेट या नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट, जितने भी इम्प्लांट ऑर्थोपेडिक सर्जन आपकी बॉडी में डालते हैं, वो सब एमआरआई कंपैटिबल होते हैं, आप निश्चिंत रहें। और अगर आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है और आपको एमआरआई वाले पूछते, तो कहना कि डॉक्टर मल्होत्रा ने हमें रेडियो प्रोग्राम पे बताया था, अनुराधा जी भी गवाह थी, कि ऐसा में कोई रुकावट नहीं होती है एमआरआई कराने में।
1: जी डॉक्टर साहब, किन परिस्थितियों में ये तय किया जाता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ही आखिरी विकल्प है?
0: जी, तो मैंने इसका उत्तर थोड़ी देर पहले दिया, अगर आप दर्द के बिना और दर्द की दवाई खाए बिना आधा घंटा खड़े नहीं हो सकते हैं, आधा घंटा चल नहीं सकते हैं, आधा किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, सप्ताह में एक बार से ज्यादा आपको दर्द की गोली खानी पड़ती है, दर्द से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई है, तो आप इन घुटनों या कूल्हा या कंधे, जो भी आपके जोड़ आपको तंग कर रहे हैं, उनसे आपको, खास करके ये घुटने और कूल्हे के लिए, क्योंकि मैंने चलने की बात कही, तो आपका घुटना खराब हो चुका है, कूल्हा खराब हो चुका है, तो मोटे तौर पे तीन चीजें, आप चल फिर कितना सकते हैं, आपको दर्द कितना होता है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन की गुणवत्ता पे इसका कितना प्रभाव पड़ा है, उससे आप ही को डिसाइड करना है। आपके डॉक्टर को ये बातें नहीं मालूम है। अगर आप मैनेज कर रहे हैं बिना पेन किलर खाए और अपना काम काज सुचारू रूप से करके, बिना अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब किए, तो मैनेज करिए, लेकिन इन सब के साथ जीना अपने आप को एक प्रताड़ना देने वाली बात है।
1: जी, नी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये भी देखा जाता है कि एक ही घुटने का सर्जरी की जाती है, क्या दोनों घुटने की सर्जरी पॉसिबल है अगर मरीज करवाना चाहे?
0: तो हमने एक आर्टिकल इसमें इंटरनेशनल अमेरिकन जर्नल में पिछले साल छापा था, और हमने ये बताया था कि किन लोगों को दोनों घुटने चेंज किए जा सकते हैं, किन को एक समय पे एक ही करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब आयु बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे विदेश में 75 कहते हैं, पर हमारे यहाँ हम 70 कहते हैं, क्योंकि हमारा जो अमेरिकन्स के मुकाबले में औसतन स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, अगर किसी को डायबिटीज भी है और उसकी एज भी ज्यादा है, अगर किसी को कोई भी मेजर बॉडी की इलनेस है, या उनके एक ही घुटने में मेनली तकलीफ है, हमारा नियम यह है, अगर आपके ज्यादा खराब वाले घुटने में 100 पैसे दर्द है और दूसरे में 60 पैसे से कम है, तो आपको एक ही कराना चाहिए। और अगर पेशेंट हमें कहता है कि हमें दोनों कराने हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनके दोनों खराब हैं कि नहीं, और फिर हम अपने कार्डियोलॉजिस्ट से और एनेस्थेटिस्ट से बात करते हैं और ये देखते हैं कि उनमें कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उनको दोनों करना सेफ नहीं है, तो हम नहीं करते हैं, समझा के एक टाइम पे एक ही करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या लागत आती है अगर कोई एक आम इंसान कराना चाहे?
0: तो जोड़ों की कीमत तो प्रधानमंत्री जी ने तय कर दी है, वो तो कवर्ड है, तो वो तकरीबन 60,000 में नी रिप्लेसमेंट आता है, और करीब 1.5 लाख में कूल्हे का जो बेसिक, एक 35 से 1.5 लाख तक में कूल्हा आ जाता है, और बाकी आप जिस अस्पताल में करा रहे हैं उनका पैकेज होता है, जो कि इम्प्लांट के अलावा कहीं भी मतलब 1.5 से लेके 2.5-3 लाख तक पैकेज होता है उसका।
1: जी, रोबोटिक जॉइंट

0: जॉइंट प्लेसमेंट के बाद किस तरह की सावधानी की जरूरत होती है?
1: तो रोबोटिक जॉइंट प्लेसमेंट सिर्फ एक तरीका है। तो मैं पेशेंट से ये कहता हूँ, जब वो पूछते हैं कि हम रोबोटिक कराएं कि नहीं, तो मैं उनसे कहता हूँ, देखिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, गाड़ी आपकी है, मैं आपका ड्राइवर हूँ, आप मुझे मर्सिडीज देंगे तो मैं मर्सिडीज में ले जाऊंगा, आप मुझे होंडा देंगे तो होंडा में ले जाऊंगा, या आप मुझे मारुति देंगे तो मारुति में ले जाऊंगा। मेरा काम है आपको सेफली पहुंचाना, चाहे आप मुझसे पारंपरिक तरीके से कराएं या रोबोटिक से कराएं। उसी तरह से जब एक बार सर्जरी हो गई तो रोबोटिक और नॉन रोबोटिक में कोई पोस्ट ऑपरेटिव में, रिहैबिलिटेशन में, एक्सरसाइज में कोई अंतर नहीं है।
0: जी, तो श्रोताओ यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। यदि आपका भी कोई सवाल है तो तुरंत हमें कॉल करें, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है और आप अपने सवाल हमसे तुरंत कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर है 01123421080, 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे की बात।
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है मेरे मन में कि कौन सी स्थितियां होती हैं या इन्फेक्शंस होते हैं जिनके दौरान रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट को डिले किया जाता है?
1: जी, चाहे रोबोटिक हो या पारंपरिक हो, कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट उस समय पे नहीं करना चाहिए जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन का फोकस हो। खास करके हम डायबिटिक्स में देखते हैं और लेडीज में कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती है। तो अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो उसका पूरी तरह से उसको क्योर करके ही जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। और ये भी बात याद रखें कि भले ही चाहे वो कोई आर्टिफिशियल जॉइंट, हिप जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, या कोई स्टेंट हो, हार्ट वॉल्व हो, कोई भी अगर आर्टिफिशियल चीज आपकी बॉडी में है, तो कोई भी इन्फेक्शन

0: होने पे तुरंत उस इन्फेक्शन का इलाज होना चाहिए, ताकि वो जो आर्टिफिशियल इम्प्लांट आपकी बॉडी में है उसमें वो इन्फेक्शन नहीं पहुंच जाए। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। शंट में न्यूरोलॉजी के शंट होते हैं, वॉल्व होते हैं, उन सब में खास करके ध्यान रखना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
2: मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी,
2: दो तीन क्वेरीज है। जैसे मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ तो ड्राइव करने का टेल बोन में बड़ा पेन फील करता हूँ। दूसरा, मैंने ये सुना है जैसे ज्यादा चलने से कि हमारे घुटने में कार्टिलेज, जिसे हम ग्रीस भी बोलते हैं, वो क्या कम हो जाती है ऐसे कुछ?
0: जी, बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ठंड में जो हमारे अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो हल्का सा जम जाता है, प्लस मांसपेशियां भी ठंड में कुछ अकड़ जाती है। तो सर्दियों में, कुछ देर पहले भी मैंने बताया कि जोड़ों का दर्द जो है वो बढ़ जाता है, हमारी नर्व भी थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जब हमें कोई चोट लगती है, आपने देखा होगा कि सर्दियों में ज्यादा दर्द करती है, क्योंकि जब हमें चोट लगती है और जो केमिकल निकलते हैं जो दर्द करते हैं, वो गर्मियों में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है स्किन में, तो उसको बहा के ले जाती है तो दर्द कम होता है। सर्दी में हम हीट कंजर्व करते हैं तो स्किन में कम हीट पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंचता है, तो वो केमिकल ज्यादा देर तक दर्द करते हैं। और जब हम प्रिकॉशंस बताते हैं घुटने के लिए, तो हम ये बताते हैं, मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूं। घुटने के अंदर फ्लूइड होता है, जब पानी एक जगह खड़ा हो जाता है तो बदबू मारता है। उसी तरह अगर आप बहुत घंटों तक अपने घुटने को नहीं हिलाएंगे तो वही हालत होगी जैसे कि पानी रुकने से होती है, क्योंकि तब केमिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आपको उठ के 4-5 कदम चलना पड़ता है, अपने आप को टांग को हिलाना पड़ता है, और वो फ्लूइड जब सर्कुलेट हो जाता है उसमें वो केमिकल्स की मात्रा कम हो जाती है, तो ये ठीक हो जाता है। तो चलते रहे, चलाते रहे, जोड़ आपके चलायमान रहेंगे तो दर्द नहीं करेंगे।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं ने बहुत गौर से सुना होगा और उसे इस तरह से अपनाएंगे कि उनके जीवन की दिक्कतें जो हैं जोड़ों से, दर्द से जुड़ी हुई, वो तमाम समस्याएं खत्म हो जाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: जी श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, ट्रॉमा फॉर्मर चीफ JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एंड प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली। और उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को आपने सुनकर पूरी तरह से लाभ लिया होगा। आपको बता दें कि अगर आप अपना फीडबैक हमें भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi। अपना सुझाव, प्रतिक्रिया हमें इस पर भेज सकते हैं healthairdelhi@gmail.com। तो सुनते रहिए कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से लागू व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पर कहा, भारत ब्रिटेन की साझेदारी में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुर्वेद

शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें कर्नाटक से मंसूर अली खान और मध्य प्रदेश से रजनीश कुमार अग्रवाल शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनः निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी करेंगे। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरूआत की थी। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवा मानकों को बढ़ावा देने और नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश फार्मा परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओडिशा के पुरी में कल से भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथयात्रा शुरू होने जा रही है। कल नव यौवन दर्शन के बाद वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में शनिवार से केंद्र शासित प्रदेश में मौसम में सामान्य बदलाव का अनुमान है। बर्मिंघम में खेले गए पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस को हराकर स्पेन फाइनल में पहुंचा। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला आज। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।
4: कल तलक जो सच था वो बन गया फसाना, तिनका तिनका बिखरा

0: से एक पल में बदल जाती है जिंदगी, उसका एहसास सिर्फ और सिर्फ वही इंसान बता सकता है जिसके साथ वो हादसा हुआ है और उस हादसे की वजह से बदल गई है उसकी जिंदगी।
1: मेरा नाम बबीता है।

0: और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने साथ कुछ ऐसे हादसा हुई है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बचपन में मेरी मम्मी पापा गुजर चुके थे और मैं अपनी चाचा चाची के साथ रहती थी। कुछ टाइम बाद मैं अपनी चाचा के साथ दिल्ली आ चुकी थी रहने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरी चाचा जो है उनकी अनवांटेड लड़की के साथ काफ़ी संबंध है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं उससे बहुत छोटी थी, ज़्यादा कुछ मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे घर पे एक लेडी आना जाना शुरू किया और उनके साथ मेरी चाचा जी की काफ़ी अच्छी रिलेशन भी था उनके साथ। तो उन्होंने फिर मेरा एज को देखते हुए मेरे चाचा जी को उन्होंने कन्विंस किया है कि जो बिजनेस मेरे चाचा जी करते हैं उनके साथ मुझे भी दखल दिया जाए। शुरू शुरू में मेरे चाचा बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो भी उस लेडीज़ के दबाव में आ जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे चाचा एक क्लाइंट को घर लेके आते हैं अपना एक फ्रेंड बोल के, और फिर उनसे बातचीत करते हैं। उस दिन मैं अकेली घर पर थी। फिर मेरे चाचा किसी दुकान पर चले जाते हैं कोई सामान लेने के बहाने से, और उस दौरान वो इंसान मुझ पर हमला कर देता है। मैं काफ़ी डर गई थी, मुझे उस समय समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मैं किचन से एक नाइफ ले लिया था, कोई मेरे पे अगर हमला करे उससे पहले मैं हमला कर दूँ, क्योंकि मैं सहमी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं। तो जैसे ही वो आदमी मेरे पास आया तो मैंने उनको डराने की कोशिश करी सबसे पहले, और वो डर भी गया। और फिर तुरंत वो घर से बाहर जाके मेरे चाचा जी को फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि मैंने उन पर हमला कर दिया। फिर मेरे चाचा जी घर आए थोड़ी देर बाद। उसके बाद मेरे चाचा जी ने मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी की, मेरे पे हाथ उठाया और मुझे बहुत बुरा भला मुझे उन्होंने सुनाया। लेकिन ना जाने क्यों उस समय मैं अपनी कंट्रोल में नहीं थी और मेरे से अनजाने में एक हादसा हो गया। जो नाइफ लेके मैं उस आदमी को डरा रही थी, उस नाइफ से मेरे चाचा जी का खून हो गया मेरे हाथ से। और उस हादसा होने के बाद मैं तिहाड़ जेल चली गई। मेरी लाइफ की 9 साल तिहाड़ जेल में कैद हो गई, लेकिन आज मैं बाहर हूँ, एक आज़ाद पंछी की दुनिया में मैं जी रही हूँ। मेरे खुद की एक पार्लर है, मैं वहाँ काम कर रही हूँ और अच्छे से जी रही हूँ अपनी जिंदगी के साथ। और मैं सभी लड़कियों से संदेश देना चाहती हूँ, दुनिया में अगर आपको किसी पे भरोसा करना है, विश्वास करना है, तो सबसे पहले अपने माँ बाप पे करिए। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होते, पहले उनसे पहले भरोसा जीतिए, उनके साथ टच में रहिए।
1: जी हाँ, बबीता जैसी कई लड़कियां आज हमारे समाज में पाई जाती हैं, जो अनजाने में ही कुछ ऐसा कर जाती हैं जिससे उनकी जिंदगी का पन्ना ही पलट जाता है। दोस्तों, जेल में बिताए गए एक एक पल नासूर की तरह चुभते हुए पूरी जिंदगी भर सताते रहते हैं।

0: को देखता है तो न सिर्फ उसकी आंखें हो जाती हैं नम, बल्कि निराशा के गहरे बादल भी उसकी आंखों के सामने से होने लगते हैं ओझल। और दोस्तों, इसी कश्मकश और तनाव में जिंदगी का बदलने लगता है रुख। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है बता रही हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ।
1: मैं ये कहना चाहती हूँ आज की पीढ़ी को कि हर एक जमाने में हर एक पीढ़ी को अलग अलग तरीके के तनाव और दबाव आते हैं। ठीक है, ये बड़ा नॉर्मल है क्योंकि हम उत्तेजित होते हैं अपने जीवन को शुरू करने के लिए, और जब जीवन की राह हमारे अनुसार नहीं चलती है, हमारे सपने हमें पूरे होते नहीं नजर आते हैं, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हमको लगता है जिस तरीके से हम चाहते हैं गाड़ी चले, वैसे क्यों नहीं चल रही है। तो ये बड़ा नॉर्मल है और हर पीढ़ी को होता है। ये डिप्रेशन होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि क्या होगा हमारी जिंदगी के साथ, और उसके अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर हमको शांत रहना बहुत जरूरी है। हमको ये याद रखना जरूरी है कि हर पीढ़ी को ये परेशानी होती है और हर वर्ग के लोगों को मानसिक तनाव होता है, होता था, होता है, होता रहेगा, लेकिन उसका सामना कैसे करना है ये हमें सीखना है। सबसे पहले तो जब हम सुबह उठ के चिड़ियों को देखते हैं, वो तो उड़ती हैं और कहाँ कहाँ से वो अपना पेट भरती हैं, भोजन उन्हें मिल जाता है। तो सुबह के समय पर हमको ईश्वर को जरूर मनन करना चाहिए और अपनी जो भी परेशानियां हैं ईश्वर से कहनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश माना जाता है कि हम लोग बहुत धर्मी लोग हैं, हम लोग परमेश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो जो अगर युवा पीढ़ी है उसको लगता है कि मेरा जीवन तो सत्यानाश है, कोई फायदा ही नहीं है मेरे जीने का, तो वो क्या कर रही है, वो युवा पीढ़ी नकार रही है परमेश्वर की उपस्थिति को, और वो उन्हें नहीं करना है। उनको परमेश्वर पर भरोसा करके अपने जीवन को आगे चलाना है। दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी और गुस्सा आना ये नॉर्मल बात है, सबको होता है। तीसरी बात है कि सहायता का कोई ना कोई जरिया निकल आता है, कोई ना कोई उपाय हो जाता है। और जिस तरीके से जब हम छोटे होते हैं तो हम कोई टेंशन नहीं लेते ना, हमें पता है कि हमारे माता पिता बैठे हैं हमारी टेंशन लेने के लिए। ठीक उसी तरीके से हमें याद रखना है कि परमेश्वर है, कोई ना कोई मदद करने को आ जाता है, कोई ना कोई दरवाजा खुल जाता है, कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है और जिंदगी आगे चलती रहती है। अपने हाथ में जिंदगी को लेना और मौत का निर्णय ले लेना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने ये निर्णय लेने की सोची, अपने जीवन का अंत करने की सोची, लेकिन किसी ने उनकी सहायता करी, शायद किसी ने उनको सलाह दी, शायद उन्होंने रेडियो पे हमारा कार्यक्रम सुना, तो उन्होंने अपना जीवन खत्म करने की जो विचार था, जो आइडिया था, वो छोड़ दिया। और फिर आगे उनके साथ वो जब वो चले जीवन में तो रास्ते खुले, है ना। हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पर, अपने आप पर, और रास्ते खुल जाते हैं, रास्ते मिल जाते हैं। तो दुखी मत होइए, हताश मत होइए, क्रोधित मत होइए। बुरा समय सब पर आता है, हर जमाने में बुरा समय आता है, हर पीढ़ी तरह तरह से उसका सामना करती है, लेकिन जिंदगी क्या है, जिंदगी चलती रहती है। तभी तो वो हम गाना गाते हैं, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम।

काम है, लेकिन इसी चलते हुए जीवन में अगर माता पिता का साथ बच्चों को मिल जाए तो मुश्किल डगर भी आसान लगने लगती है।

जी हाँ, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना आ जाएं, माँ की गोद में न सिर्फ सुकून मिलता है बल्कि जीने का हौसला भी। इसीलिए आप जब भी निराश हो, परेशान हो, तो अपनी माँ से बात कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम भी अच्छा लगा है तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं या दिशा फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7678438471 पर, जी हाँ, नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7678438471 पर मैसेज या फोन जरूर करें। आप अपनी बात को वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव ले

102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए बुधवार की शाम का वो खास प्रोग्राम जो जुड़ा है आपके कॉलेज की जिंदगी के साथ। और नाम है इसका क्या, इसका नाम है जी अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन, जिसमें आपको हम लिए चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी बहुत सी जानकारी, वहां के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन, और वहां के बहुत से लोगों को हम समेट कर लाते हैं आपके लिए हर बार। नहीं, सारा क्रेडिट मैं नहीं ले सकती हूं, क्योंकि मेरे साथ होती हैं मेरी फेलो आरजेस, और आज एक बार फिर से मेरी सहयोगी माला नेगी जो है वो हमारे लिए लेकर आई है बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन। हम सभी जानते हैं कि कॉलेज एडमिशन जो है ना, वो काफी एक बड़ा ही कॉम्पिटिटिव जो है वो प्रोसेस है, और खास तौर पे जब नंबर ऑफ सीट्स जो है ना, उनकी संख्या के मुकाबले जो अप्लाई करने वाले हैं उनकी संख्या ज्यादा हो तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो बढ़ता ही है। बहुत सारी चीजें और भी है ध्यान रखने की, केवल कंपटीशन में सक्सेसफुल होने से नहीं होता है, प्रोसेस को भी तो सही तरह से फॉलो करना चाहिए ना। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, और ये छोटी छोटी बारीकियां जो है ना, यही वक्त है कि जब हम ये सीखना शुरू करते हैं, जब ये ट्रांजिशन होता है ना स्कूल से कॉलेज का, तो बस यहीं से हो जाती है शुरुआत इस बात को समझने की कि किस तरह से छोटी छोटी टेक्निकलिटीज और छोटी छोटी जो बातें होती हैं, डिटेल्स होती हैं ना, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं आपके सफल या असफल होने में। अब यहां पर एडमिशन का जो मिशन है ना, तो इस मिशन एडमिशन को किस तरह से जीतना है और किस तरह से भाई आपने अपने पसंद के कॉलेज में जाके अपना झंडा गाड़ना है, इन सबसे जुड़ी बहुत सी जानकारी, यानी कि एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी बहुत सी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे इस प्रोग्राम में अल्फाजन में। पिछले हफ्ते भी हमने आपको एडमिशन से जुड़ी बहुत सी जानकारी दी थी, एक बार फिर से मेरी फेलो आरजे

0: माला लेकर आई हैं आपके लिए, एडमिशन से ही जुड़े और बहुत सारी काम की बातें आप जरूर सुनिए। हमारा आज का ये प्रोग्राम नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, और आइए जानते हैं पहली जानकारी माला ने किससे ली।
1: नमस्कार, तो अभी मैं हूँ रामजस कॉलेज में, और कॉलेज में जब एडमिशन्स की बात होती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, और ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हम अभी तक दे चुके हैं और कई और सवालों के जवाब देने बाकी हैं। स्टेप 3 में जब आपकी लिस्ट पहुंचेगी कॉलेज के पास तो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, लेकिन वेरीफाई करते हुए अगर कॉलेज आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर श्योर नहीं है और इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात करता है तो आपको क्या करना है, इस सवाल का जवाब लेंगे हम रामजस कॉलेज के एडमिशन सेल के कन्वीनर डॉक्टर अनुज कुशवाहा सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
1: कॉलेज से अगर उसके हेल्प डेस्क से वहां से अगर उसका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है?
2: एक्चुअली में हेल्प डेस्क है हमारे कॉलेज के लेवल पे, ग्रीवेंस कमेटी भी है और ग्रीवेंस कमेटी की फर्दर सब कमिटीज भी हैं जिसमें वो कैटेगरी वाइज हमने उसको डिफरेंशिएट भी किया हुआ है। तो अगर उन्हें कोई कैटेगरी रिलेटेड इशू है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई PWD का ही कैंडिडेट है और उसको कोई इशू हो रहा है वहाँ पे, उसका सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसका केस रिजेक्ट हो गया, तो वहाँ पे अपनी वो ग्रीवेंस रेज कर सकता है। तो कॉलेज लेवल पे भी है एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे भी है। द कैंडिडेट कैन ऑल्सो गो एंड रेज द ग्रीवेंस एट द यूनिवर्सिटी लेवल एज वेल, एंड देन वो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक उसमें आंसर भी मांगा जाता है दैट कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्ड टू इट, एंड देन अकॉर्डिंगली इन केस द कॉलेज आई मीन द यूनिवर्सिटी इज नॉट सेटिस्फाइड एंड फील्स दैट द एडमिशन शुड बी ग्रांटेड टू द कैंडिडेट, द एडमिशन उसको मिल जाएगा उसमें।
1: और अगर यूनिवर्सिटी की जो ग्रीवेंस कमेटी है अगर वहां पर स्टूडेंट को अप्लाई करना है तो ऑनलाइन कोई ईमेल आईडी होता है?
2: ईमेल आईडी वहां अवेलेबल होगा वेबसाइट पे।
1: ओके, तो ईमेल पर संपर्क करें, और अगर कोई मिलना चाहे पर्सनली तो क्या वो पॉसिबल है या नहीं?
2: नहीं मैम, वो आउटराइटली यूनिवर्सिटी ने मना कर रखा है इस चीज के लिए कि सारा, क्योंकि सारा प्रोसेस ही ऑनलाइन है
1: जी।
2: तो फिजिकल मोड में हम ना तो यूनिवर्सिटी के कोई मिलेंगे और ना ही कॉलेज के।
1: ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अब क्योंकि तकनीक का युग है, टेक्नोलॉजी ने सब तरफ अपना परचम लहरा दिया है, तो ऑनलाइन अगर एडमिशन प्रोसेस है और वहां पर अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपको कहीं कंप्लेंट करनी है या आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी, तो वो भी ऑनलाइन मोड पे होगी। थैंक यू सो मच सर इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए और स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अगर मंजिल पानी है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी नेविगेशनल स्किल्स जो है ना वो कमाल की हो, और वो स्किल्स आपको कौन देता है? वो स्किल्स आपको देते हैं वो सभी जानकारी के स्रोत जो आप तक लेकर आते हैं आपके काम की इन्फॉर्मेशन, और उसमें से मैं हमारे इस प्रोग्राम को भी गिनती हूँ। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में एडमिशन से जुड़ी और बहुत सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। Oh.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग में मैं हूं स्वाति, आप सभी के साथ। और मेरे साथ है मेरी फेलो आरजे, मेरी सहयोगी माला नेगी, जिन्होंने इकट्ठा की है एडमिशन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए। इनफैक्ट ये इतनी सारी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की है कि हम आपको हफ्ता दर हफ्ता जो है ना ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। एडमिशन जो है वो एक बहुत कहना चाहिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी उस जिंदगी की शुरुआत में, जो आपको आगे एक अडल्ट वर्ल्ड के लिए, एक दुनियादारी के लिए, एक जिसको हम कहते हैं ना आपके करियर से रिलेटेड जो होता है, आपकी जिंदगी से जुड़ा जो होता है, उस दुनिया के लिए जो आपको तैयार करती है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ कॉलेज लाइफ के अपने मजे भी हैं जो हम सभी लेना चाहते हैं। एंड ऑब्वियसली एक ऐसा वक्त होता है जिंदगी का जिसका हम करते हैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार, और अक्सर गुजर जाने के बावजूद वो ना हमेशा आपके साथ रह जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसी आपकी जो कॉलेज लाइफ है उसके एडमिशन से जुड़ी जितनी भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जानकारी है और उसके साथ साथ जो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए, वो सब कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इस बहुत सारी एक्सटेंसिव जानकारी को प्राप्त करने के लिए माला ने की बहुत सारे लोगों से बातचीत, ताकि कोई भी पहलू जो है ना वो अनछुआ ना रह जाए और सारी की सारी जानकारी वो आप तक पहुंचा सके। अगली बातचीत किससे की, आइए जानते हैं।
3: हमारे साथ हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज में प्रोफेसर नमन जैन सर, जो कि यहाँ की कॉलेज एडमिशन कमेटी के इंचार्ज हैं। और आज हम सर से बहुत सारे ऐसे सवाल करने वाले हैं जो आपको सुनकर लगेगा कि ये तो मेरा भी सवाल है।
4: कई बार ऐसा भी होता है कि अब बच्चा है, कहते हैं दिल तो बच्चा है जी, बच्चा भी बच्चा है जी, तो कई बार उस बचपने में बच्चे कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं जो नहीं करने चाहिए। अब उन्होंने कोई सर्टिफिकेट जो है वो कहीं से नकली बना के डाल दिया जी, अब CUET में तो हमें किसी भी तरह से निकल के कॉलेज में एडमिशन तो लेना ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कुछ तो करेंगे, कुछ तो तिकड़म लगाएंगे। कुछ तिकड़म लगा के अगर उन्होंने कोई सर्टिफिकेट जमा कर दिया तो क्या पकड़ कुछ ऐसी है कि फंस भी सकते हैं?
5: जी बिल्कुल होगा, ऐसे कॉलेज लेवल का यही रोल है, या जैसे भगत सिंह कॉलेज या कोई भी बाकी कॉलेजेस का यही रोल है कि जब वो एडमिशन देंगे उससे पहले उस बच्चे के वो सारे सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करेंगे ऑनलाइन।

0: करेंगे जिस एजेंसी ने, जिस पर्टिकुलर स्टेट ने उनको इशू किया है, उसके पास एक हर सर्टिफिकेट का एक यूनिक नंबर होता है, हम उससे मैच कर लेते हैं। लार्जली अब हर स्टेट्स के साथ वो मैच हो जाता है। इन केस कोई पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटली अवेलेबल नहीं है, वो हम मैच नहीं कर पाए, तो हम वो बाद में वेरीफाई करेंगे।
1: अच्छा,
0: आपके उन डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद भी अगर बच जाता है तो हर कॉलेज में एक एडमिशन ऑडिट कमेटी होती है। एडमिशन होने के बावजूद बाद एक एडमिशन ऑडिट कमेटी होगी, वो एडमिशन के जो जितने भी एडमिशन मिले हैं उनको ऑडिट करेगी। तो ना के बराबर चांसेस है, मैं आपको यही कहूंगा। बहुत ही, मतलब मैं ये कहूंगा जितना मेरा अनुभव है, 0% चांसेस है कि आप फेक सर्टिफिकेट देके एडमिशन ले लें। आपको लेना भी नहीं चाहिए और ले भी नहीं पाएंगे। है ना? और बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है किसी कारणवश, ह्यूमन एरर, जब भी पकड़े जाएंगे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक साल हो गया है तो डिप्लोमा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आपके वेस्ट हो जाएंगे।
1: अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया है लेकिन आपको कॉलेज वो नहीं चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं मैं इंतजार करूंगा, सेकंड लिस्ट का आप वेट कर रहे हैं, तो ये जो इंतजार वाला प्रोसेस है इसको कितने इंटेलिजेंटली डील करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं, जो आ गया ले लो फटाफट।
0: मैम, आप फर्स्ट लिस्ट में अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है आप उसको ले सकते हैं। सेकंड लिस्ट में अगर आपको प्रेफरेंस का रीऑर्डरिंग का भी चांस मिलेगा कि आप अपने कॉलेज की प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं, और आपको उससे कुछ बेहतर कॉलेज मिलता है तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन मिल रहा है, मैं ये सुझाव दूंगा कि आपको ले लेना चाहिए। है ना? क्योंकि बाद में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। सेकंड लिस्ट में आप अपग्रेड कर सकते हैं, जो उसके बाद कोई लिस्ट आएगी उसमें अपग्रेड कर सकते हैं, जब तक की पॉसिबिलिटी होगी। आप उसमें अपग्रेड कर ले। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है पहली लिस्ट में तो आपके पास कोई चांस है ही नहीं, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा।
1: इसमें फी का कैसे मैनेज करते हैं?
0: मैम, फी का ऐसे है कि क्योंकि फी कॉलेज को नहीं मिलती है इनिशियली, वो सबसे एंड में मिलेगी। तो बाई चांस आपका लिस्ट ए में, कॉलेज ए में एडमिशन हो गया था, और लिस्ट टू में आपका बी कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो आपकी जो फी है वो, अगर ए और बी कॉलेज की फीस आमतौर पर अलग अलग होगी, सब कॉलेजेस की फीस सेम नहीं है, तो आपको दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अगर बी कॉलेज की फीस ज्यादा है तो। अगर बी कॉलेज की फीस कम है तो आपकी जो फी डिफरेंस अमाउंट है वो आपके उसी अकाउंट में रिफंड आ जाएगा जिससे आपने पेमेंट की थी। इस बात का ध्यान देना होगा आपको कि जब आप जिस अकाउंट से आप फी पे कर रहे हैं उस अकाउंट में फी दोबारा आ सकती है, आपका रिफंड आ सकता है। तो कई बार ऐसे होता है कि बच्चे रिमोट एरियाज में कैफे वालों से फीस भरवा देते हैं, तो जो रिफंड आएगा वो उन्हीं के अकाउंट में आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप फॉर्म भर रहे हैं, एक और सुझाव है कि कोशिश कीजिएगा डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी कैफे के माध्यम से, अगर आपके पास नहीं है, साइबर कैफे होते हैं, इनके माध्यम से आप भर लीजिए, है ना, ताकि उसमें क्लैरिटी ज्यादा आ जाए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
2: जी, तो कौन सा चांस है जो आपने लेना है और कौन सा चांस है जो नहीं लेना है, कौन सी तिकड़म लगानी है और किसको बिल्कुल साइड में रख देना है, ये सभी चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल जब एडमिशन्स की बात आती है तो यहां पर आप सेकंड चांसेस नहीं ले सकते हैं ना, तो सही करना है और सही तरीके से करना है। तरीका सही होता है, वैसे कहते हैं ना, मीन्स डिफाइन द एंड्स, तो अगर आपके मीन्स सही होंगे तो आपका एंड भी जो है वो आपके पास जरूर पहुंचेगा, आपकी मंजिल जो है वो आपके पास जरूर पहुंचेगी, क्योंकि सही रास्ते पर सही तरह से चलकर ही मंजिल को पाया जा सकता है। लेकिन इस रास्ते में आने वाले कौन कौन से पड़ाव हैं और इस रास्ते में आने वाले कौन कौन से स्पीड ब्रेकर्स हैं, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, और यही काम कर रहे हैं हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। सुन रहे इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन। मिशन एडमिशन के ऊपर हो रही है बातचीत पिछले दो हफ्तों से और आज भी हम कर रहे हैं यही। वैसे जब पढ़ाई की बात आती है या करियर बनाने की बात आती है तो भाई एक तो होती है आपके ट्रेडिशनल अकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज है जिसकी जरूरत बेतरह महसूस की जाती है और वो है प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपोजर। वो कौन सा कॉलेज है जिसने इन दोनों चीजों के बीच का ये जो फासला है ना उसको तय करने में आपकी मदद की है? जी, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज की बात कर रही हूं मैं, जहां पर आपके स्टैंडर्ड ऑनर्स कोर्सेज के साथ साथ हाईली स्पेशलाइज्ड वोकेशनल स्ट्रीम्स जो है ना उनका भी वो वाले कोर्सेज भी जो है ना वो आपको यहां पर मिलते हैं। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी और उन्होंने वहां पे की बातचीत और वहां के एडमिशंस के बारे में एंड ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के बारे में जनरली भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की वहां से। आइए जानते हैं वहां पर जाकर उन्हें क्या प्रैक्टिकल टिप्स मिले।
1: हमारे साथ है शहीद भगत सिंह कॉलेज, हमारे साथ है शहीद। अभी इस समय मैं हूं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में और हमारे साथ हैं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार। नमस्कार।
1: अभी बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जो नए बच्चे सीयूईटी के जरिए अब अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस देंगे उनको कौन से कोर्सेज आउटडेट होके जा चुके हैं सीबीएस में और कौन से आ गए हैं, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उन तक
2: ये जो कैसे होगा? नए कोर्सेज बच्चा जब एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है एक समर्थ पोर्टल है, उस पोर्टल पे ही उसका एडमिशन होता है। तो वहां जाके उसको सब्जेक्ट चूज करना होता है, कॉलेज चूज करना होता है। हमारे सारे कोर्सेज वहां पे अपडेट हो गए हैं और जो पुराने से हट गए हैं तो बच्चे को चूज नहीं है, वो अवेलेबल है, वो दिखेगी नहीं वहां पर। तो अब बच्चे ने अभी तक उसमें क्योंकि सीयूईटी का रिजल्ट अभी आया है तो बच्चे को वहां दिखेगा ही नहीं, वो तो जो अवेलेबल है खाली वही दिखेगा, इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी उसको सारी की सारी।
1: बहुत बेहतरीन सर। स्टूडेंट सबसे पहले ये सोचता है कि कॉलेज में रहते रहते उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज क्या मिल सकती हैं, तो अगर हम सीवीएस कॉलेज के बारे में बात करें, सीवीएस कॉलेज के लिए तो है ही कि वो तो बच्चे तैयारी उस हिसाब से करते हैं कि उनको इंडस्ट्री में आगे जाके कहीं कोई परेशानी ही ना हो, लेकिन जब तक पढ़ रहे हैं तब तक वो किस तरह से ट्रेंड हो, किस तरह से उनकी लर्निंग और बेटर हो, इसके लिए कॉलेज ने क्या स्पेशल कुछ किया?
2: इसमें देखिए मेरा एक इंस्टीट्यूट को हेड करने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ के निकले या तो वो हायर एजुकेशन में जाए या उसको जॉब मिले, इस लायक बन जाए कि एक अच्छी नौकरी उसको मिले
1: जी।
2: तो आजकल जमाना बड़ा फास्ट मूव कर रहा है, दुनिया धीरे धीरे बदल रही है, चैट जीपीटी आ गई और कई सारे और ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बच्चा है उसको कुछ एक्स्ट्रा करे वो, क्योंकि खाली डिग्री से आज की दिन में उनको नौकरी नहीं मिलती है। तो हमने अपने हर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करी कि आप हर डिपार्टमेंट एक या दो या तीन एड ऑन कोर्सेज बनाएं। एड ऑन कोर्स का मतलब है हमारा ऐसा कोर्स डेवलप करें हम जो बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चे को पैसा नहीं लेंगे, टीचर को भी पैसा एक्स्ट्रा देंगे नहीं।
1: अच्छा।
2: तो सैटरडे संडे को और यहाँ शाम के टाइम ऑनलाइन मॉड्यूल उसको हम पढ़ाते हैं बच्चों को। तो 40-45 घंटे का मॉड्यूल होता है वो और एक सेमेस्टर में हम लेके जाते हैं। तो पिछले सेमेस्टर में, उससे पिछले सेमेस्टर में भी हमारे बच्चों ने इंग्लिश डिपार्टमेंट के कोर्सेज किए, ऐसे क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर कोर्स करा, अब स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसे है। तो हम चाहते हैं वो कोर्सेज ऐसे बने और ऐसे हमने बनाए हैं जिन्हें बच्चे

0: की स्किल डेवलप हो।
1: तो इसका सर्टिफिकेशन कौन करता
0: है? हम कॉलेज देगा,
1: कॉलेज को,
0: और कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है तो कॉलेज का सर्टिफिकेट मिलेगा उसको। बच्चे ने कोई फीस नहीं दी और वो उसका एक रिज्यूमे को एनहेंस करता है वो चीज। और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी कई सारे कोर्सेज इस तरह के बनाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आजकल जैसे कंप्यूटर मशीन लर्निंग की बात होती है, डाटा एनालिसिस की बात होती है, साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इस तरह के दो तीन कोर्सेज वहां भी बने हैं। एक हमने रन किया था और अभी हम चलाएंगे। आजकल क्वांटम की बात हो रही है, AI से आगे की चीज है वो, उस पर भी हमने कोर्स बनाया है। अगले सेमेस्टर में हमारे जो BSc कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक हमने और भी काम किया कि हमारे बच्चे यहाँ पर BSc करते हैं, पहले तो 3 साल की थी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, अब 4 साल की हो गई है। जो बच्चे BTech करते हैं वो IIT में जाके MTech कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: हमारे बच्चे खाली 3 साल की डिग्री के कारण उसको नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके लिए 4 साल की रिक्वायरमेंट है। अब हमारी डिग्री भी 4 साल की हो गई है तो मैंने यहाँ पे गेट्स प्रिपरेशन सेल बनाया।
1: अच्छा।
0: हमारे टीचर्स हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं उसमें, ताकि हमारे बच्चे भी गेट क्वालिफाई करके एमटेक में एडमिशन ले।
1: वाओ, दैट्स सो लवली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, स्टाफ अगर सपोर्ट कर रहा है तो ऐसी चीजों का बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलना बनता ही और मिलना ही चाहिए। ऐसी काफी सारी कोशिशें कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में हो रही है। थैंक यू सो मच सर, इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए।
2: कहीं जाइए नहीं, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, इन्फॉर्मेशन आगे और भी है बहुत सारी जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप सुन रहे हैं अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, मेरे यानी स्वाति के साथ। हमारे साथ है मेरी फेलो RJ माला नेगी, और माला नेगी ने की है बहुत सारी जानकारी इकट्ठा आप सभी के लिए। बदलते हुए जमाने के साथ साथ जिस तरह से अकेडमिक्स का स्वरूप बदला है, उसी तरह से कॉलेजेस ने भी अपने आप को अपग्रेड किया है, अपडेट किया है, और बहुत सारे नए कोर्सेज जो है ना उन्होंने आपके लिए खोले हैं, क्योंकि बदलते हुए वक्त के साथ बहुत सारे करियर्स जो हैं वो फेज आउट हो जाते हैं और बहुत सारे नए जो है ना वो ऐड हो जाते हैं। और जब इतनी सारी ऑप्शंस जो है ना लगातार आपके सामने आती रहे लगातार, तो ऑब्वियसली उन्हें चुनने का तरीका भी जो है ना वो और ज्यादा स्पेशलाइज हो ही जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है सही जानकारी का होना, और जानकारी पहुंचाना आप तक है हमारा काम जो हम करते हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं हमारा वो प्रोग्राम जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए है खास तौर पे, और वो स्टूडेंट्स जो ट्रांजिशन कर रहे हैं स्कूल से कॉलेज लाइफ में, उन सभी के लिए हम लेकर आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। और भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ना वो फेमस है अपनी वाइब्रेंट कैंपस लाइफ के लिए, अपनी सोसाइटीज के लिए, अपने फेस्ट्स के लिए, और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर जो है ना आपको मिलती हैं कुछ साल के लिए और फिर रह जाती हैं जिंदगी भर। एंड ऑब्वियसली यादें और दोस्त उसमें से सिर्फ एक या दो चीजें ही हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। वो सारी बातें जो आप यहाँ पर सीखते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस जो आप यहाँ पर करते हैं, ये सारी चीजें जो है ना एक्चुअली में ना बाद में जाके जब आप अपनी जिंदगी में अपने रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं तो ये सारे लेसन, ये सारे लोग, ये सारी बातें जो है ना वो आपके बहुत काम आते हैं, और ये सारे एक्सपीरियंसेस लेकर हम आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी की तरफ। लेकिन इस बहुत ही वाइब्रेंट सी जो कैंपस लाइफ है उसमें जब आप एडमिशन लेते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। और भाई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत को तो मैं कहती हूँ कि आप जितना भी कहें ना कि जरूरी है जानना, उतना कम है, लेकिन उसके बावजूद आप तक पहुंचाना जानकारी वो हमारा काम है, और जितनी हो सकती है उतनी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे, और जैसा मैंने कहा था इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खत्म नहीं होती। माला जो है मेरी फेलो आरजे, उन्होंने की और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठी, और वो सारी जानकारी जो आपके काम की है वो आप तक पहुंचाने के लिए कर रही है बहुत ज्यादा मेहनत। आइए जानते हैं अगली बातचीत उन्होंने किन से की।
1: तो अभी मैं हूँ CVS कॉलेज में और हमारे साथ हैं CVS कॉलेज के एडमिशन इंचार्ज प्रोफेसर नीलमणि प्रसाद सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे सर, अभी क्योंकि CUET का रिजल्ट आ गया है, स्टूडेंट्स हर एक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं एडमिशन से रिलेटेड, और बहुत जगह पर कंफ्यूज होकर गलतियां भी कर बैठते हैं, तो जनरली किस तरह के कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट्स को और उसके सॉल्यूशन क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: शुरुआत हम करते हैं कि जो एडमिशंस में कैटेगरी वाइज जो एडमिशंस होते हैं उसमें थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजन्स होती है बच्चों के बीच में।
1: जी
2: OBC कैटेगरी जो है उसमें जो वो सर्टिफिकेट सबमिट

0: वो पूरे कोर्स का है
1: जी,
0: और वो एंड मोमेंट पे फोन करते हैं, एंड मोमेंट पे डिस्कशन करते हैं कि सर हमारी तो, हमने तो ये सोचा था कि इतनी फीस है पूरी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग सेमेस्टर में डिवाइड कर लिया था। तो ऐसा नहीं है, वो सेमेस्टर वाइज फीस होती है, तो वो पूरी फीस आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। थर्ड जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ आते हैं कि बहुत सारे बच्चे जिनके एडमिशन के लिए आ जाते हैं कॉलेजेस में, और वो लास्ट मोमेंट में जाकर के कोशिश करते हैं कि फीस सबमिशन के लिए, ठीक है, लास्ट आवर में कई बार फीस सबमिशन में उनके फीस सबमिशन नहीं हो पाता या उनका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, फिर वो लगातार कॉल करते हैं कि उन्होंने कोशिश की थी और उनके एडमिशंस नहीं हो पाए। तो ऐसा है कि वो लास्ट आवर को अवॉइड करें, वो पहले ही फी वगैरह सबमिट कर दें, ज्यादा बेटर है, अदरवाइज उनका एडमिशन कन्फर्म करना बहुत टफ होता है।
1: मान लीजिए एडमिशन फी जमा करते हुए पोर्टल में कुछ इश्यू आया, उनके पास कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई कि सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ, और ऐसे में इस कंफ्यूजन के चलते बाय चांस उनका फीस रह गया, तो उस केस में क्या उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा?
0: नहीं, उस केस में यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती है कि हम बच्चों को ये कहते हैं कि यदि आपको लगता है कि टेक्निकल ग्लिच यदि यूनिवर्सिटी के पोर्टल में है, तो आप उनके साथ स्क्रीनशॉट टाइमिंग के साथ आप भेजें, और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद यदि हमें लगता है कि जस्टिफाइड केस है, तो फिर हम उसको आगे कंसीडर भी करते हैं। एक कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे बच्चों को पसंद का कॉलेज चाहिए, एक एक मार्क्स आने के बाद उनको लगता है कि उनके पसंद के कॉलेज मिल जाए, लेकिन एडमिशंस के टाइम पे जैसे फर्स्ट लिस्ट आना है, फर्स्ट लिस्ट में उससे मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाता, तो मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता, तो फिर बच्चे जिस कॉलेज में एडमिशन के लिए उनका रोल मार्क्स आता है, वहां पे कॉल करके ये पूछते हैं कि सर मुझे ये कंफर्म करो कि नेक्स्ट टाइम क्या सेकंड लिस्ट में हमारा वहां पे आ जाएगा। तो ऐसा है कि वो कोई भी टीचर या कोई भी इंस्टीट्यूशन ये नहीं बता सकता कि उसका उस कॉलेज में हो जाएगा। बेटर ऑप्शन ये होता है कि यदि आपको लगता है कि उस कॉलेज में भी आ सकता है, तो फर्स्ट आप अपनी एडमिशन लो, वहां अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है, आप अपग्रेड मोड में जैसे ही आपने ऑप्शन ले लिया, जिस कॉलेज को आपने चूज किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको दिया है, यदि उस कॉलेज में नेक्स्ट कट ऑफ में आपका आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड होकर के उस कॉलेज को चला जाएगा। बस उस ड्यूरेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको मैसेज आता है, वैसे ही जो फी गैप है दोनों कॉलेज के बीच में जो फी गैप होगा, वो भी आपको पेमेंट करना होगा, देन आपका कन्फर्म हो जाएगा। ये बेसिक प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स बच्चों के आते हैं। कोर्स वाइज कई सारे बच्चे ये कोर्स वाइज भी फोन करते हैं क्या कि ये कोर्स कैसा है, इसमें हमारा मतलब प्लेसमेंट कैसे होगा, जॉब्स कैसे मिलेगा। ऐसा है क्या कि जितने भी कोर्सेस हैं वो सारे अच्छे हैं, यदि आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आज के डेट में हर जगह डिमांड्स हैं। इस तरीके के कन्फ्यूजन में नहीं कि इस कोर्स को करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई ना कोई बेनिफिट है, तभी बच्चे कर रहे हैं और तभी जो है सो उनको सक्सेस भी मिल रहा है। तो कोर्स जो आपने चूज किया है उस पर कॉन्फिडेंट रहें। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पोर्टल पे जब एडमिशन के पोर्टल पे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो वो डीजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स यदि अप्रूव करते हैं, तो फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि हम डीजी लॉकर से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्या कि जो डीजी लॉकर यूज नहीं करते, तो उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट होता है क्या कि वो स्कैन जब करें तो क्लियरिटी के साथ स्कैन करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मार्कशीट के सीरियल नंबर्स नहीं आते, जिससे वेरिफिकेशन करने में दिक्कत होती है, तो उन चीजों का वो जरूर ध्यान रखें।
1: लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि बच्चों ने तो कर दिया अपना डॉक्यूमेंट स्कैन करके डाल दिए, उन्हें नहीं पता कि आपको क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या फिर कहीं भूल चूक रह गई, अब ऐसे में कॉलेज को अगर कंफर्म करना है तो वो क्या करेंगे?
0: नहीं, उसके अंदर होता है, बच्चों ने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें बच्चे अपने जो पेरेंट्स का अपना मोबाइल नंबर देते हैं, हम उन नंबर्स पे कॉल करते हैं, उनके दिए हुए ईमेल एड्रेस पे उनको ईमेल भी करते हैं कि आपके इन डॉक्यूमेंट्स की क्लियरिटी नहीं है, इनको दोबारा आप स्कैन करके विद इन टाइम लिमिट आप भेजो। तो ये ऑप्शन देते हैं, तो उससे ये भी है क्या कि वो बच्चे, जैसे पीछे ये ऐसे इंसिडेंट हुए कि बच्चे ने मेल ही नहीं चेक किया, फोन पिकअप नहीं किया, और एडमिशंस के क्लोज होने के बाद उनके फोन्स आए क्या कि हमने तो जो है हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। तो उस ड्यूरेशन में जब एडमिशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो उस ड्यूरेशन में जब आपके पास में कॉल जाता है, तो आप प्लीज उसको अटेंड कीजिए। हो सकता है कि उन कॉल्स में वो भी कॉल हो कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके मिस्ड हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा।
1: जी, तो इसका मतलब ये है कि बी अटेंटिव, आपका कोई काम प्रोसेस में है और ऐसे में आपको अटेंटिव रहने की जरूरत है। हो सकता है जिस कॉल को आप समझ रहे हो मार्केटिंग कॉल है, हो सकता है वो आपके कॉलेज का आपके जरूरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कॉल हो। सो बी अटेंटिव और कॉल्स को पिक करने या फिर उनको छोड़ते हुए जरूर देख लीजिए कि ये कॉल आपके मतलब का तो नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हमारे

0: शेयर की। नमस्कार।
1: जी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और एडमिशन की जब बात आती है भाई, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, इसके साथ साथ अटेंटिव होना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है, बहुत ही ज़रूरी फैसला है जो आप कर रहे हैं। बहुत सी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, केवल इस कार्यक्रम के माध्यम से नहीं बल्कि और भी अन्य हमारे कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से ये सारी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और अगर इसके बावजूद आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो लगातार DU का जो एडमिशन पोर्टल है ना, उसको चेक करते रहना चाहिए ताकि आप तक सही अपडेटेड जानकारी पहुंचती रहे। फिलहाल आज का हमारा ये प्रोग्राम यानी कि अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन जो है, इसको मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूं। समय हमारा था बस यहीं तक। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार,
1: नमस्कार। पेश है आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसावा डांगो अपोसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी। NIP 2012 की तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत के भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। महाराष्ट्र में मुंबई के नहवा शेवा और संताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र से खेपों को रवाना किया गया। चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायुक्त डॉ सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अंतर्गत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में शौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में जारी संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে জাগৃতি শৰ্মা। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रूपये से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ

0: मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजघर सवार डांगो आपूसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। NIP 2012 की तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहरीएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमरीका ने होर्मुज जलनबरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

0: The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees.
1: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम
2: टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद अ टोटल आउटले ऑफ 62,500 करोड़ रुपीस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स द स्कीम प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक सोर्सिंग एज इंडिया हैज नाउ डेवलप्ड अ स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड मेनी मोबाइल फोन कंपोनेंट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री अंडर द स्कीम क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन वर्थ अराउंड 39 लाख करोड़ रुपीस इज एक्सपेक्टेड एंड अराउंड 60,000 न्यू डायरेक्ट jobs will be created
1: 3000 direct jobs may create on
0: In other major decisions the government gave the nod to the development of an over 40

0: একক ছবিৰ গীতৰ অনুষ্ঠানত আজলি নবৌ ছবিখনৰ কেইটামান মনপৰসা গীত শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতেই সংস্কৃতত বাতৰি শুনিবলৈ পাব। বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्धिः अद्यतन कार्यान्वितो जातः। अयं सन्धिः भारतस्य कृषकेभ्यः उद्यमेभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यश्च नवीनां गतिं प्रदास्यतीति प्रख्यातवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल आश्वसितवान् यत् व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्ध्यन्तर्गतं दुग्धोत्पादनानि शाकानि खाद्यतैलानि इत्याख्यानि कृषि उत्पादनानि पूर्णरूपेण सन्ति सुरक्षितानि। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू समाजस्य महते कल्याणाय आयुर्वेदे आधुनिक प्रविधीनाम् उपयोगाय आह्वानं व्यदधात्। भारतेन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदः परिष्काराय कृतः दृढाग्रहः। संकेतितञ्च यत् विषयेऽस्मिन् शिथिलत्वेन संयुक्तराष्ट्रे जनानां क्षीयते निरन्तरं विश्वासः। अद्यतावत् ओडिशा राज्ये प्रचण्ड वृष्ट्यै प्रसारितास्ति रक्तवर्णीया संचेतना। अपि च फीफा विश्वचषके अद्य रात्रौ एटलांटा क्रीडांगणे द्वितीये उपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे अर्जेंटीना देशः इंग्लैंड देशेन साकं प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रावोचत् यत् अद्यतन कार्यान्वितः व्यापक आर्थिक एवं वाणिज्यिक सन्धिः सहैव सामाजिक सुरक्षा सहयोगः भारत ब्रिटेन देशयोः सहभागितायाः कश्चन महत्वपूर्ण स्तम्भः वर्तते। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्रिणः पीयूष गोयलस्य सामाजिक सञ्जालीय सन्देशं प्रसारयता प्रधानमन्त्रिणा इमे विचाराः प्रकटीकृताः। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् इयं CETA प्रणाली भारतस्य कृषकेभ्यः उद्यमेभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यश्च नवीनां गतिं प्रदास्यति, येन नैकानि जीवन्त क्षेत्राणि ब्रिटेन विपण्यां दृढतां प्राप्स्यन्ति। तेन प्रतिपादितं यत् इदं तन्त्रं प्रौद्योगिक्याः व्यावसायिक सेवानां नवोन्मेषस्य च क्षेत्रे पारस्परिक सहयोगं प्रगाढं विधास्यति, सहैव कुशलानां भारतीय प्रतिभानां गतिशीलतां प्रबलीकरिष्यति। अद्यैव कार्यान्विते अस्य सामाजिक सुरक्षा सहयोगस्य अथवा द्विगुण अंशदान अभिसमयस्य सन्दर्भे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् इदं ब्रिटेन देशे अस्थायिरूपेण कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यवसायिकेभ्यः अमूल्यं साहाय्यं प्रदास्यति, अथ च भारतीय प्रतिष्ठानानां प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतां सुदृढीकरिष्यति। अयं द्विगुण अंशदान अभिसमयः संयुक्त साम्राज्ये भारतीय व्यवसायिकानां गतिशीलतां प्रतिस्पर्धां च वर्धयिष्यति। श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् अयं क्षणः भारत ब्रिटेन लोकतन्त्रयोः पारस्परिक विश्वासं तथा च वाणिज्य प्रौद्योगिकी निवेश नवोन्मेषैः संचालितं भविष्योन्मुख सहभागिता निर्माणस्य संकल्पं प्रदर्शयति। प्रधानमन्त्रिणा विशेषरूपेण समुल्लिखितं यत् भारत ब्रिटेन देशौ पारस्परिक समृद्धये निरन्तरं मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू समाजस्य महते कल्याणाय आयुर्वेदे आधुनिक प्रविधीनां च उपयोगाय समाह्वानं कृतवती। अद्य नवदिल्ल्यां संस्कृतं विंशति षड्विंशतिः इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटन समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः न्यगादीत् यत् केन्द्रसर्वकारेण नवीनोर्जया सह आयुर्वेदयोगौ वैश्विकमञ्चे संस्थापितौ। तया एतदर्थं सन्तोषः प्रकटीकृतः यत् आयुर्वेदिकशल्यक्रियायाः प्राचीनपरम्परा वैज्ञानिकमानकानुरूपं दृढीकर्तुं श्लाघनीयाः प्रयासाः विधीयन्ते।
2: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन अद्य उत्तरप्रदेशस्य एकोनविंशति राष्ट्रिय राजमार्गात् वाराणसी रिंग रोड इत्येतयोः मध्ये षट्चत्वारिंशत् किलोमीटरमितं यावत् व्याप्तं षड्मार्गीय ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर इतीदं हाइब्रिड एनयूटी मॉडल इत्यस्मिन् अनुमोदितम्। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् परियोजनायाः आहत्य व्ययः प्रायः सार्धचतुर्दश सहस्र कोटि रूप्यकात्मकः वर्तते, येन नगरीय मार्गजालस्य संकीर्णता न्यूनीभवति, सहैव नगरीय गतिशीलतायां वृद्धिः भविष्यति। अस्याः परियोजनायाः प्रभावक्षेत्रे सामान्य यात्राकालः प्रायः षष्ठिनिमेषेभ्यः विंशतिनिमेषपर्यन्तं न्यूनी भविष्यतीति अपेक्ष्यते। उत्तरप्रदेशस्य वाराणसी नगरे जनसम्मर्दं न्यूनीकर्तुं एनएच 31 सहैव वरुणानद्याः पार्श्वे वाराणसी रिंग रोड इत्येतयोः योजयतः 43 किलोमीटर इत्यतः अधिकाः षट्चत्वारि मार्गयुक्तस्य एलिवेटेड कॉरिडोर इत्यस्य विकासाय अपि मन्त्रिपरिषदा अनुमोदितम्। परियोजनायाः आहत्य व्ययः प्रायः 11,000 कोटि रूप्यात्मकः वर्तते। इयं योजना एनएच 31 तथा काशी रेलस्थानकयोः मध्ये यात्राकालं प्रायः 40 निमेषात् 20 निमेषपर्यन्तं न्यूनीकरिष्यति, यच्च प्रायः 50% यावत् न्यूनी भविष्यति।
3: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन प्रोक्तं यत् समग्रार्थिक व्यापार सन्धिः व्यापारस्य निवेशस्य नवान्वेषणस्य च नूतनान् मार्गान् उद्घाटयति। आंग्ल दैनन्दिने प्रकाशिते एकस्मिन् लेखे श्रीगोयलः अवदत् यत् एषः सन्धिः उद्योगानां कृते अद्वितीयावसरान् स्रक्ष्यति। सहैव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः 47+2000 विकसित भारतस्य दूरदृष्टिम् अधिक गतिशीलां करिष्यति। अयं महत्वाकांक्षी सन्धिः भारतस्य जनानां क्षमताम् आकांक्षां च प्रतिबिम्बयन् समाजस्य प्रत्येकं वर्गं सशक्तं करिष्यतीति सः अवोचत्। भारतेन संकेतो दत्तः यत् संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदः परिष्करणे असफलतायाः सहैव वैश्विक संघर्षाणां प्रभावी समाधाने विफलतायाः कारणात् संयुक्तराष्ट्रं प्रति जनानां विश्वासः निरन्तरं क्षीयते। संयुक्तराष्ट्रे बहुपक्षीयतायाः भविष्योन्मुखसज्जीकरणम् इति विषये आयोजिते मन्त्रिस्तरीय गोलमेज उपवेशने सम्बोधनकाले भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पी हरीश अवोचत् यत् सुरक्षापरिषदा प्रचलत्सु संघर्षेषु सार्थक हस्तक्षेपो नैव विहितः, येन अन्ताराष्ट्रिय शान्ति सुरक्षयोः रक्षणाय परिषदः क्षमतायां प्रश्नाः उद्भवन्ति। भारत ऋतु विभागे अद्य ओडिशा राज्य अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया पूर्व संचेतना प्रदत्ता सहैव पृथक पृथक स्थानेषु अत्यधिक वृष्टेः संभावनापि प्रकटिता श्वः यावत् पूर्वोत्तर भारतस्य बिहारस्य पश्चिमबंगस्य उत्तराखण्डस्य केषुचित् भागेषु अपि प्रचण्ड वृष्टिः भवितुमर्हति फीफा विश्वकप फुटबॉल क्रीडायां गत विजेता अर्जेंटीना देशः अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे द्वितीयायां उपांत्य चक्रीय क्रीडायां इंग्लैंड देशं सम्मुखी करिष्यति क्रीडायाः आरम्भः तावत् भारतीय समयानुसारं प्रातः सार्ध द्वादश वादने भविष्यति इति वार्ताः
0: বাতৰি পাছত পুনৰ উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত প্ৰিয় শ্ৰোতা এতিয়া আগবঢ়াইছো তপতী শিকদাৰৰ কণ্ঠত ভজন

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा। 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसावां डांगो आपोसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल

0: आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत के 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना ज़ाहरिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की दो दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees.
2: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम,
3: टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद अ टोटल आउटले ऑफ 62,500 करोड़ रुपीस ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years. द स्कीम प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक सोर्सिंग एज इंडिया हैज नाउ डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड मेनी मोबाइल फोन कंपोनेंट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री. अंडर द स्कीम क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन वर्थ अराउंड 39 लाख करोड़ रुपीज इज एक्सपेक्टेड एंड अराउंड 60,000 न्यू डायरेक्ट jobs will be created.
2: 3,000 direct jobs may create on.
1: In other major decisions, the government gave nod to the development of an over 43-kilometer long, 6-lane and 4-lane elevated corridor connecting National Highway 31 and the Varanasi Ring Road along the river Varuna for decongestion of Varanasi city in Uttar Pradesh. The cabinet also cleared a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. It approved 2 multi-tracking projects covering 4 districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. The cabinet also cleared the National Investment Policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. The Comprehensive Economic and Trade Agreement or CETA between India and the United Kingdom came into effect today. Simultaneously, the agreement on social security, also referred to as the

0: জীৱনৰ খলাবমাক মসৃণ কৰি নিজৰ লগতে দহজনকো অনুপ্ৰাণিত কৰা সফল দম্পতীৰ কাহিনীৰে
1: জীৱন আলীৰ যুগলবন্দী।
0: মাহৰ প্ৰথমটো দেওবাৰে নিশা 9:30 বজাত সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা সীমান্ত বাৰ্মাৰ।
2: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে সামাচাৰ সন্ধ্যা News@9 আৰু স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
3: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সামাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই জাগৃতি শৰ্মা। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
4: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
3: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
4: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
3: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति

0: दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत में ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक है।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो सीएम

0: निस्सार है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।

0: फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई U19 और U23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Center clears 2 elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Tensions rise in West Asia as US reimposes naval blockade on Iran amid exchange of fresh strikes between the two countries. 3 Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England at Atlanta in the US tonight for a place in the final. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the Cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. He informed that investment worth 4 lakh crore rupees is expected under Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
4: Us industry ko aur aage badhane ke liye bhi isme pravdhan.
2: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. He said the scheme is aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub.
5: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम
3: टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद एन टोटल आउटले ऑफ 62,500 करोड़ रुपीस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स द स्कीम प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक सोर्सिंग एज इंडिया हैज नाउ डेवलप्ड अ स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड मेनी मोबाइल फोन कंपोनेंट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री